0: थापाले भनेको कुरा सही हो, ज्यान बाँचे पो धन, ज्यानै नभए के धन के मन।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: 아주 가난은 하잖아.
1: 헐 나티니 냐기 정글당 싱다야 언야생더이.
0: 예 오로바주 오정아비 정글 안 하우 싱다야 가르전 번러 카 자우전아보러 올려우치보 바주 짐자 샬라란다우 갸모 언더 칠부랴 나툰게 베쎄이 마야이 라게 꼭도 중어 헌냐 먼냐 라게 더러 나툰 런더 풋대야 룽루
1: 야 호다 나티니 너가기 간투리트 가임 다야 바타브라니야 드리스티콘 퉁 비암 महत्वपूर्ण भूमिका लिया हाब्रे तुम गे जम्मै मिले द रक्षे दाया है अन्त पर्यटन ल सहयोग दाया पानो जीविको पार्जन ल टिवा सुक्न्या पानो आका अरक मुया दान्त अवस्था लले आका तुम नेपाल सरकार ए संरक्षित सूची ल सूचीकृत दाउसीले क्या जम्मै मिले द जंगल तुम झुङ दान्दौ माय द जुगात्न्या पानो
0: ओहो अन्त नङ चाहिँ हाब्रे तुम जुगान्या हेन त लाग्यो नलिन्छन लागे मले ने बाजु
1: कोदा मलिंगे आकलो लागी कि ओरे शिकारी ओदु कारण ए नंग न काका ए ब्या समय जल न हाल अचुंगसी वालीउ अरके उल्जो सचेत ले समुदाय रापी हाब्रेलो महत्व बारे ल सुल्हा आयु
0: ए होड अनुगमन वनगस्टी वृक्षारोपण पोखरी निर्माण समुदाय ल अखिन्द विद्यालय सचेतना कार्यक्रम आका जम्मै हाब्रे संरक्षण लोज हो जयंग
1: बास न्यामी नातिनी
2: लुगा लगाऊ गाडी चढ्ने ठाउँसम्म जाऊ गाडी चढ अस्पताल पुगेर पुर्जी काट लाइन लाग कहिले नाम बोलाउँछ अनि बल्ल
3: देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु यति सजिलै अनि त अब हाम्रो पात्र एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ न पैसा लाग्छ धेरै न समय जान्छ खेरै